0: नो दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मगरिब नमाद वक्त
1: अल्लाहू अकबर अल्लाह

हम आकाशवरुण अव्वाही ओट्टराय ओशुं गस्फळुवा रसकलांगे एकलांगे मारवेफावा तकेतिन दिरे तकेति नेरुवा रसकलांगे अदि दिरे तकेतिन मारवेफावा तकेति नेरुवा रसकलांगे एई अल्लाह फहे एकन बैमी हुं ईमां कमुं इक्किबावे गन्ननी खुं फदेकुं हिये।

हिंदुस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: हाँ बराबर बराबर हिमायन तो कौन दबे जहाँ दे भी हाँ रोका जे पूरी है ही वे एन तो कौन दबे जहाँ दे भी इश्कु बेन उन्नु में वा कौन कुछ जगह बाहर से कॉल दानी
1: बुने
0: देना इराद करे भी आएंगे ना नोट करे वे मदी का मती वाणी DFM 91 ना कुरानी
1: प्रोग्राम

0: अस्सलाम वालेकुम नोदे है के मेगाहर्ट्ज़ दिवे ही एफएम गे हुन तेरी नंग उफा विरवा कुत कॉल कंगे तुम स्पोर्ट स्पीड मी शो याकोगा मिया तुमी बदल कॉल दी समा मी प्रोग्राम के मकसद की मुनिफुई फिल्म के तेरे कुड़ी वरुक दायरा घर का तेरवा फरा तो गे दायरा के वहां तक अमिला दिरुम के वहां तक ए हुन तेरी ना हमे गेनेस देनो मी शो कुरिया मी गेंदनी को मे होम दुए के मेंदुर दे जहायरो
1: स्पोर्ट्स बीट Sports Beat.
0: Today, I am going to talk to you about the FM. I am going to Sports Beat. I am going to talk to you about the show. I am going to talk to you handball team. I am Firnash Abdullah. I am going to talk to you about the team. I am going to talk to you about the show. I am going to talk to you about the Amila Raghu. Amila Raghu is going to talk to you about Firnash Abdullah.
2: নদী হে এখন মেগাহার্টজ দিবে হে এফএম কে কমে গাড়ি রেগে ফুরতম লাভে কবস দিবে হে আমিল্লা রাগে লাভে

0: دي اللي هي FM نوديها كم ميجا هرتز.
1: वायरल फाइव का आशा भोसले के ट्रिब्यूट लिस्टों दिम्मी किन्हें स्थानी नवारसत्य का है दिह अव्वल आहरुगे मशहूर फिल्म डोन के लावे ये मेरा दिल मैं डिस्को फंक म्यूजिक के फुरी हमना मोनाए मिलावें आशा के आड़ुगे जोशा फोरी अधि जादुए कंवरे रीत कोंगी विगेंदे मिलावें की बाइनल अकुआ मेको तुम इस फाहक को ले वे लावे एगो तुम द ब्लैक आइड पीस के डोंट फंक विथ माय हार्ट का मिलावें के बैठ के बेनों को फवायरो मार्वल स्टूडियोज के मिस मार्वल सीरीज का विस मिलावा बेनों को फवे मिलावें की आशा यंग हैवन फिल्म फेयर अवार्ड लिप मुगे शरफ विस हो द दिन लाफिस में